कुछ भी पहले ही दे दू वार्निंग, पार्टी चले गिट सेक्स इन द मॉर्निंग, जी भर के ना चले वे भी नाच नाच के तोड़ दे सैंडल, आंटी पुलिस बुला लेगी तो यार तेरा